0: तो यहाँ तो साँझ में नाच है, यहाँ तो साँझ में नाच है,
1: आजू ना
0: मेरा से,
1: आजू ना